0: ஒலிபரப்பது ஆங்கிலத்தில் செய்திகள்.
1: குட் மார்னிங், திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி, தி நியூஸ் ரெட் பை சாய்ரா முஜ்தபா. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
2: तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है. जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा. इस बात को हम लोगों ने माना है. कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम.
1: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the

0: bronze medalist from Birmingham 4-1 using his height and technique to great advantage. The win moves Siwaj into the pre-quarterfinals, where he will face the tough challenge of England's Will Hewitt.
1: लॉन बॉल्स खेल शायद भारत में बहुत जाना पहचाना नहीं है, लेकिन इस बार दुनिया इस खेल में भारत का नाम जरूर सुन रही है। गेंद धीरे चलती है, मुकाबला धैर्य से जीता जाता है और भारत लगातार अपने निशाने पर पहुंच रहा है। शुरुआत करते हैं वुमेन पेयर्स से, जहां पिंकी और रूपा रानी चिरकी की जोड़ी ने लगातार 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर अपनी नॉकआउट राउंड तक पहुंचने की उम्मीदों को बुलंद कर दिया है। कल खेले गए मुकाबले में टोंगा से आने वाली मिलिका नेथन और पेरिस बेकर की जोड़ी को इन्होंने हराया। पिंकी और रूपा दोनों ही 2022 की उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो मुकाबले आउटडोर यानी नेचुरल ग्रास पर खेले गए थे। इस बार के मुकाबले इंडोर्स यानी कारपेट वाली घास पर खेले जा रहे हैं, जिसके लिए पिंकी बताती हैं उन्होंने लंदन जाकर खास तैयारी की।
2: जितने भी हमने तैयारी पहले करी है या 22 में भी जो हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी वो ग्रास पे थी और हमेशा ग्रास पे हुआ है। इट्स अ फर्स्ट टाइम ये इंडोर हो रहा है। इसके लिए जो हमें चाहिए थी फैसिलिटीज, जो टाइम चाहिए था जितना, और जो टेक्निकल चाहिए थे, हमारे मैनेजर का सपोर्ट चाहिए था, वो सब हमें मिला है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, होपफुल कि हम दोबारा क्रिएट करें, तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग दीजिए।
1: दूसरी तरफ अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे 43 साल के पुतुल सोनोवाल मेन सिंगल्स में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने कनाडा के रायन बेस्टर, जो कि आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें हराया। दूसरे मुकाबले में पिछड़ने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। हालांकि कल पुतुल को एक कड़े मुकाबले में मलेशिया के इज्जत जुल्केप्ले के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पुतुल नॉकआउट राउंड में पहुंचने की दौड़ में बने हुए हैं। पुतुल देश के लिए मेडल लेकर आना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ पुतुल के साथ खुद भी हुआ।
3: बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है। कोशिश करूंगा कि इंडिया को मेडल देने के लिए। पहले लॉन बॉल असम में ऐसा कोई जानकारी नहीं था, लेकिन 2022 में जब इंडिया ने पहली बार वुमेन फोर्स में गोल्ड मेडल जीता, तो वहाँ पे असम का भी एक मेंबर था जो लॉन बॉल इवेंट का फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन नयनमणि सैकिया। उसके बाद असम में अभी लॉन बॉल का ऐसे माहौल हो गया है कि सबका टारगेट है सभी प्लेयर को कॉमनवेल्थ गेम खेलना।
4: अब बात करते हैं 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल की। शनिवार को भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था जब महिला 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम ने वेल्स के खिलाफ अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया। हालांकि मैच के नतीजे ने ये साफ कर दिया कि इस स्तर पर चुनौती कितनी बड़ी है। वेल्स ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पूल बी के इस मैच में 16-1 से एक तरफा जीत दर्ज की। भारतीय टीम वेल्स की आक्रामकता और स्कोरिंग की रफ्तार का सामना करने में संघर्ष करती नजर आई। टीम शुरुआत में ही पिछड़ गई और फिर इस अंतर को कवर नहीं कर पाई। वेल्स ने शुरुआत से अंत तक मैच पर पकड़ बनाए रखी। वहीं भारतीय टीम अपने 12 प्रयासों में से सिर्फ एक को ही पॉइंट में बदल सकी, जहां रीना गुप्ता ने भारत के लिए एकमात्र अंक बनाया।
1: महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की ये राष्ट्रमंडल खेलों में पहली उपस्थिति थी। पहली बार इस बड़े मंच तक पहुंचना ही अपने आप में एक जीत है। और बताते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन।
5: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एम्ब्रेस ऑल स्पोर्ट दैट हैज गॉट मेडल्स एट द इंटरनेशनल लेवल एंड टू सी व्हीलचेयर बास्केटबॉल नॉट ओनली फ्लरिश बट टू बी एबल टू फील्ड अ टीम इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इज हार्टनिंग इंडीड। They are inspirations and they are pioneers as well. This team will inspire a lot of others.
4: टीम अब इस शुरुआती मैच से तेजी से सीख लेकर प्रतियोगिता में तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी, ताकि जब वो नाइजीरिया के विरुद्ध 27 जुलाई को कोर्ट पर लौटे तो एक मजबूत प्रदर्शन कर सके।
1: In women's artistic gymnastics, the quartet of Nishka Agarwal, Pranati Nayak, Ishita Rivale and Pratishta Samanta represented India in the team finals. Alas, they could not secure a medal. However, by the virtue of their performances, Ishita Rivale and Pratishta Samanta were able to register themselves as the reserves for the individual finals, which will take place on Sunday.
4: स्विमिंग की बात करें तो शनिवार को पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में भारत के दो तैराकों दक्षिण शशि कुमार और आर्यन नेहरा ने हिस्सा लिया। टोल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में दक्षिण ने अपनी रेस 3 मिनट 58.09

0: सेकंड में पूरी की, जबकि आर्यन ने 4:02.6 का समय क्लॉक किया। कुल 27 तैराकों के बीच दक्षिण 15वें स्थान पर रहे, जबकि आर्यन उनसे एक पायदान पीछे 16वें स्थान पर रहे। हीट से सिर्फ शीर्ष 8 सबसे तेज तैराक को ही फाइनल में जगह मिलती है, इसलिए दोनों में से कोई भी भारतीय फाइनल में जगह नहीं बना सका। दोनों आज 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में एक बार फिर से एक्शन में दिखेंगे।
1: आइए अब बात करते हैं कि रविवार यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन कौन कौन से खेलों पर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी। सबसे पहले वेट लिफ्टिंग, जिसमें मीराबाई चानू मंच पर उतरेंगी, बारबेल सामने होगा और करोड़ों निगाहें उन पर।
2: इंडिया विल बी फील्डिंग अ वेरिटेबल लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट इन वेट लिफ्टिंग टूडे एट द SEC आर्मेडिलो एज मीराबाई चानू कम्स आउट टू डिफेंड हर क्राउन। द 2-time चैंपियन इन द 48 kg इवेंट is the undisputed headliner of the competition and when fit, Chanu's ability puts her head and shoulders above the rest in the field. The Tokyo Olympic silver medalist will face a stern challenge from lifters belonging to Canada and Papua New Guinea, but her personal best is above the field and she is the favorite to finish on top of the CWG podium once again.
3: Hamari team pura taiyari achhe chal rahi hai, hum pura koshish karungi ki India ke liye hum medal de. Ye performance mere liye bahut zyada important hai kyunki main Asian Games mein kya kya गया और चेंज कर सकते हैं वो सब देखने का अभी टाइम मौका मिलेगा, तो ज्यादा फोकस मैं एशियन गेम्स में ही रखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है कि 2 महीने ही बचा है, तो मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखूंगी।
2: Chanu comes into the Commonwealth Games after agonizing fourth place finishes in the Hangzhou Asian Games and the Paris Olympics. G. Rajaraman on Chanu's preparation.
4: She should start as the favorite in the 48 kilo class. There is no doubt about that. She's the Commonwealth champion from last year. People will definitely expect her to do well in the Commonwealth Games. She's been very keen on doing well in the Commonwealth and in the Asian Games. So she has been very conservative in her preparation. She's not competed in too many big events. So she's been smart, so I expect her to be on the podium for sure. I think she's most likely to win gold. In fact, her coach has said that they're not even looking to do 90 kilos in snatch. That perhaps will come in the Asian Games. Right. And they know that they can win gold even without being at your 100%.
2: In the men's 60 kg category, fellow Manipuri Rishi Kanta Singh, the 2025 Commonwealth Championships gold medalist, comes into the Glasgow Games with realistic podium ambitions. He is not new to the CWG, having participated in 2022 in Birmingham in the 55 kg weight division. Meanwhile, Muthu Pandi Raja, hailing from Tamil Nadu, has come back to the sport after several years in the wilderness through injuries. He won silver in the 2025 Commonwealth Championships and is the current national champion, where he lifted a massive 302 kgs to win gold. This makes him a strong medal contender in the 65 kg weight category.
1: फिर नजरें होंगी बॉक्सिंग रिंग पर। बॉक्सिंग में एक पंच मुकाबला बदल सकता है, लेकिन रिंग में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं कलेजा चाहिए, जिसका परिचय दिया जादूमणि सिंह ने परसों हुए मुकाबले में। पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में जादूमणि सिंह ने परसों राउंड ऑफ 32 में मेजबान टीम के एरन कलन को सर्वसम्मति से यानी 5-0 से हराया था। वही जज्बा लेकर रविवार को SEC सेंटर में जादूमणि एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में उनका सामना आर्च राइवल पाकिस्तान से है। सामने होंगे पाकिस्तान के सुमैमा रहमान, और हर एक पंच के साथ कहानी बदलेगी। क्या अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि सिंह एक बार फिर इस चुनौती के सामने खरे उतरेंगे? ऐसा ही जज्बा लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना डेब्यू करने पहुंचे हैं आदित्य प्रताप यादव। पहले राउंड में इनको बाय मिला, जिसके चलते पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये सीधा राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। लेकिन राउंड ऑफ 16 में चुनौती कड़ी है, क्योंकि सामने हैं युगांडा के नूहु बाटे। इन द वुमेन्स डिविजन ऑन संडे ऑल आईज विल बी ऑन प्रीति, हु हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। शी डिफीटेड अ 3-time वर्ल्ड चैंपियन टू सिक्योर द गोल्ड मेडल। शी विल बी गनिंग टू रिपीट दोज हीरोइक्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स टू। In the 54 kilogram weight category, she will be up against Deborah Mtenje of Malawi.
0: Moving on to lawn bowls, India have a busy day at the Scottish Events campus as in the afternoon today.

0: Parani Tirki and Pinky Singh take on Namibia's Diana Willian and Amanda Steenkamp in a women's pairs Section B contest. Having defeated the world champion in his campaign opener, Putul Sonewal faces Malta's Sean Parnas in a must-win Section D contest in the men's singles.
1: फिर चलेंगे जिम्नास्टिक्स की ओर, जहां हर छलांग, हवा में उड़ता शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा मुजाहिरा किया जाता है जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं। यहां शरीर की हर हरकत कला बन जाती है और एक छोटी सी चूक बरसों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। भारत की पुरुष टीम भले ही मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन इंडिविजुअल प्रतियोगिता में तपन मोहंती और योगेश्वर सिंह फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। यहां अच्छा प्रदर्शन उनको पोडियम पर ला खड़ा कर सकता है और करोड़ों भारतीयों की यही उम्मीदें होंगी कि तपन और योगेश्वर दोनों ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिम्नास्टिक्स में भारत को मेडल दिलाएंगे।
0: Let's now turn our attention to swimming, as India's leading male swimmers will combine forces in the men's 4x200 meters freestyle relay at Toltro Swimming Center. Srihari Natraj, Anish Gowda, Aryan Nehra and Dakshin Shashikumar are scheduled to compete in the heats in the evening today. Srihari brings considerable international experience to the quartet. In a relay, individual speed must come together with well-timed changeovers, and India will first look to secure a place in the final scheduled for later tonight from a very tough field.
2: Australia topped the current medals tally with a grand total of 23, including 12 gold. England are second with 15 medals, while Nigeria are third with 6. India, meanwhile, with one bronze, are right now in joint 10th. Today, Indian athletes will set the Glasgow chill ablaze once again with every lift, every stroke and every uppercut as the quest to bring glory to the nation continues at the 22nd Commonwealth Games.
0: फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल हम आपके साथ वापस राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ इसी वक्त पर जुड़ेंगे। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी और संपादक वंदना के साथ मैं मेघा सिन्हा और दर्पण टिकिया आपसे लेते हैं इजाजत।
3: The Commonwealth Games.
4: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தினசரி நிகழ்வுகள். பத்து மணி 17 நிமிஷம் ஆகுதுங்க. நம்ம திருச்சி வானொலி அலைவரிசைகள்ல நேயர்கள் இனி கேட்கலாம் போடு ஆட்டம் போடு.

0: बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: फिर ट्राई BNB ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट।

0: मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे. तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती. आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है. आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है. इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है. 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी. इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट. यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है. कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया. यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है. इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है. यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है. इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया. इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है. 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है. दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है. आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें. मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी. मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं. कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है. कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है,

बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने
2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए।

मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं।

जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको

एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है।

बांस से बने इस वाद्य यंत्र में तीन तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंगफ्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप

0: About the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
1: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
0: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th.

0: நாம் இணைந்திருக்கிறோம் திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1. நேரம் 6:45. மத்திய அரசின் சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் வழங்கும் விளம்பரதார நிகழ்ச்சி இது.
1: Bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Community, ek community jab koi problem se joojhte hain, ye ho sake ki ek kharab air quality ho, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है. कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस. अब इन्वायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा

गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं तब उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रासरूट कम्युनिटी है लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है, हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इशूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे हैं, वेटलैंड से लेके जंगल से लेके कोस्टल एरिया से लेके सारे कुछ चीज़ों पे एक

0: जंगल से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वह है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दैट्स द आइडिया दैट वी शुड टेक सम प्रिकॉशन बिफोर वी आर कमिंग अप विद सम एक्टिविटी विच इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग अप विद अ इंडस्ट्री which is taking such and such ground water, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is the this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and give the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारा एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया. उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है. एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहा है तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है. तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन

0: कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है, एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है, उससे हम लोग देखे कि उसके क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था। उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है। एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए। उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट, जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन, एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड वेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग। Certainly, rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's. But it's a bottoms-up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए, उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट

वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना, उसके लिए रीजनल ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं. सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट. उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं. अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना. एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है. अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है. एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं. इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60. सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसी भी है, एसपीसी भी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
4: वेल, तस्वीर हो गया हूं तस्वीर देखकर हैरान है दिल यार की तकदीर देखकर। वेल, तकदीर बनाने के लिए आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पिक अपलोड करते होंगे और लाइक्स कमेंट्स ये किसे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि व्यक्ति को टैलेंटेड होना चाहिए। स्मार्ट तो आपका फोन भी है, लेकिन वो स्मार्टफोन कहीं किसी और को ओवर स्मार्ट तो नहीं बना रहा? क्या कोई और तो नहीं है जो आपके लाइफ में दखल दे रहा है? वेल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, आपकी खिदमत में हाजिर है द आकाशवाणी पॉडकास्ट। और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में कहूंगा कि बहुत वक्त लगा है मुझे अपना किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। प्रेसिडेंट ऑफ साइबर लॉज नेट एंड एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पेशलाइज्ड इन फील्ड ऑफ साइबर लॉ, साइबर क्राइम लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आज आकाशवाणी के पॉडकास्ट प्रोग्राम पर आकर।
4: देखिए, शुरुआत जो है लाइटर नोट पर ही हम करेंगे। अभी कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और शो शुरू होने से पहले ना हम खाने पीने की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कहीं ना कहीं इन्विटेशन होते हैं, इन्विटेशन कार्ड की तरह आते हैं और आप उसके थ्रू भी डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये 4 डिजिट का जो OTP है वो किस तरीके से आपके अकाउंट नंबर्स को फेरबदल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे आपसे, कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट?
5: देखिए, आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं और वो

0: कोशिश करते हैं कि रोज नए पैंतरे, नए तरीके, नए मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करें ताकि लोगों को टारगेट कर सकें, शिकार बना सकें। और अब उनके लिए तो और खुशखबरी हो गई है क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये लोग नए नए प्रकार के प्रकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और लोग चाहे कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर डरे होते हैं। इनफैक्ट COVID-19 ने सदैव के लिए हमारे जीवन में दो चीजों का छाप छोड़ दिया, एक है डर और दूसरा है पैनिक। कोविड के बाद हम जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिकी हो जाते हैं, और इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। पहले डराते हैं, हमारा विश्वास लेते हैं, और फिर हमें विवश करते हैं कि हम पैसे दें। तो डिजिटल अरेस्ट उसी का एक नया स्वरूप है, साइबर क्राइम का एक नया अवतार है। देखिए, साइबर क्राइम का एक अगर आप यात्रा देखें तो हर बदलते दौर के साथ साइबर क्राइम ने अपनी शक्ल को, अपनी मैनिफेस्टेशन को बदला है। आज का जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है वो साइबर अरेस्ट है या डिजिटल अरेस्ट है। उसका कारण बहुत क्लियर है, आज लोगों को अगर आप विश्वास में ले लेते हैं तो भारत में एक प्रॉब्लम है, हम लोग विश्वासी हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बिना सोचे समझे कि भाई आज तो हैलुसिनेशन का जमाना है, आज चारों ओर डीप फेक है, गलत इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स रूमर्स हैं, और अगर हम अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो संभावित तौर पर हम फंसेंगे। साइबर क्रिमिनल्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें डिजिटल अरेस्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज कोई है ही नहीं।
1: अच्छा,
0: कानून कहता है कि साहब अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, तो आपके घर आएगी, आपके दफ्तर आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, सर्च वारंट देगी, अरेस्ट वारंट देगी, अरेस्ट करेगी। लेकिन हुआ क्या कि 2023 में भारत ने अपने तीन क्रिमिनल लॉज को बदला, जिनमें भारतीय न्याय संहिता आ गई और BNSS आ गए। तो उसके तहत साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया नैरेटिव प्रारंभ किया 2024 में कि साहब इंडिया ने तो अब नए साइबर क्राइम्स और साइबर रिलेटेड लॉज बनाए हैं। तो अब ये लॉ कहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और लोग इस पर विश्वास करने लग गए, और यही रीजन है कि लोग कहीं ना कहीं साइबर अरेस्ट की या डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते जाएं। अभी 3 महीने पहले मेरे पास केस आया है, दिल्ली के एक बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में एक 76 साल की महिला रहती है और अकेली रहती हैं, 5 उनके नौकर हैं, दोनों बच्चे बाहर हैं, और उन्हें फोन आता है कि साहब आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। वो कहती है भाई मैंने तो इतना सब सुन लिया है और दिल्ली पुलिस कितने संदेश सुन लिए हैं, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, मैं आपको नहीं मानती। वो कहते हैं अच्छी बात। फिर कहते हैं कि साहब आप इस फार्म हाउस में रहते हैं? वो कहती है हाँ। कहते हैं हमने आपके चारों फार्म हाउस की ओर अपने शार्प शूटर्स लगा रखे हैं, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको भून डालेंगे। जब उन्हें
1: लोकेशन बताते हैं
0: ये आपका फार्म हाउस है, और बताते हैं कि साहब हमने फार्म हाउस के आसपास अपने शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे शार्प शूटर्स आपको भून देंगे। जब उन्हें लगता है कि मेरी जान ही जाने वाली है, तब वो कहते हैं भैया जो पैसे लेना लो। पहले शुरुआत में 15,000 UPI के थ्रू पेमेंट होती है, फिर वो कहते हैं बैंक से पेमेंट करो, फिर उन्हें पता है कि आपके इतनी FD है। तो करीबन 3 दिन में वो 3,74,00,000 रुपए दे चुकी होती हैं। जब उन्हें लगता है कि मेरे पास अब पैसे रहे नहीं, तब वो कहती है हमने मुझे मारना मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुलिस के पास चली। तब वो आके रिपोर्ट करती हैं। तो आज जब इतने बड़े लेवल पर इतने एजुकेटेड लोग भी आज डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, तो हम सबको सावधान होना पड़ेगा क्योंकि हम कल शिकार हो सकते हैं।
1: देखिए, आपने डर की बात कही थी
0: जी,
1: लेकिन डर आना स्वाभाविक भी है, बिकॉज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं ना कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, वो आवाज बदल के भी आपके सगे संबंधी की आवाज में आपसे बात कर सकते हैं, और वो पैनिक होना किसी का भी स्वाभाविक है, बिकॉज आपका घर में आपका कोई बेटा हो, कोई पिता हो, और जब उसकी आवाज में कॉल आएगी तो लोग कैसे नहीं डरेंगे।
0: यही तो प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि हमारे परिवारजन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अगली बार कोई कॉल आए, हम सबको अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, और वो ब्रह्मास्त्र है राइट टू डिस्कनेक्ट। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रलोभन हो, कोई भी डर हो, कोई भी शक शुबा हो, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं पहले अपने परिवारजन को कॉल करूंगा या करूंगी कि भाई तुम ठीक तो हो, मुझे मैसेज आया है। अगर उनसे बात हो गई और वो खतरे में है, तब मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन अधिकांश लोग जो अपने ब्रह्मास्त्र की जो पावर

0: है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं करते तो उस भंवर में फंसते चले जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, एक आपका डर चला गया, दूसरा अब आपको ये चिंता नहीं रही कि साहब ये मुझे तंग करेंगे या मुझे टारगेट करेंगे, तीसरा मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने परिवारजनों को कॉल करूंगी, मैं संतुष्ट हूं, सब बढ़िया ठीक ठाक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और उस नंबर को ब्लॉक करूंगी। और साथ ही साथ अब अगली बार ये भी एक प्रण लूंगी कि भाई अब ऐसा कोई कॉल होगा तो मैंने पहले 2 सेकंड के बाद कॉल को रखना ही नहीं है। कॉल को डिस्कनेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई लोग बुरे मानते हैं, मानने दें, मेरा बुनियादी जो मेरी जिम्मेवारी है वो मेरे प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को, अपने परिवारजन को प्रोटेक्ट करना है।
1: देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि फॉर एग्जांपल सर हम बात कर रहे हैं अभी बैठकर, कोई किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी खरीदना है, फोन लेना हो, टी शर्ट लेनी हो, अगर आपका फोन दूर भी रखा हुआ है थोड़ी देर के बाद आपको वो सारी चीजें दिखाने लगेगा, मतलब आपका डेटा इस तरीके से भी सेफ नहीं है। और बहुत बड़े बड़े को फाउंडर्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो जब बैठते हैं काम करने के लिए, चाहे वीडियो कैमरा ऑन हो ना हो, वो टेपिंग करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, पहले के जमाने में आप ताला लगाकर रखते थे अपने घरों में, लेकिन आज चाबी सामने वाले को खुद आप दे रहे हैं, अलाओ अलाओ एंड अलाओ।
0: समस्या ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा फोन हमारा जीवन संगनी है, कि इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। कभी उम्मीद करिए 15-20-30 साल पहले जब ये फोन नहीं हुआ करते थे, क्या जीवन नहीं चला करता था? जीवन जब भी अच्छा चला करता था और संतुष्ट रूप से चला करता था। प्रॉब्लम क्या है ना, हमें लगता है कि फोन सिक्योर है, फोन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। मुझे लगता है कि फोन से ज्यादा अनसिक्योर डिवाइस आज की तारीख में नहीं है। दूसरा, हम फोन को साधु संत क्यों मानते हैं? ये फोन जो है केवल फोन नहीं है, खासतौर पर स्मार्टफोन, ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये कॉन्स्टेंटली आपकी बातों को सुनता है, आपकी इजाजत के बगैर ये आपकी बातें, आपके डेटा को बाहर भेजता है, उस डेटा का विश्लेषण कर कंपनियां या एडवर्टाइजर्स आपको टारगेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे कल सुबह बॉम्बे जाना है, बस ये बात करूंगा, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, साहब बॉम्बे की चीप टिकट यहाँ है, बॉम्बे के अच्छे होटल यहाँ पर है। ये तब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली सुन रहा है। तो अगर आप अपनी निजता का संरक्षण करना चाहते हैं तो मेरा सबने निवेदन है कि 2 फोन रखने का प्रयास करें, एक नॉर्मल फोन और एक फीचर फोन, जो बिल्कुल 1500-2000 वाला फोन होता है, वो सिर्फ फोन का काम करता है, वो लिसनिंग डिवाइस नहीं होती, वो फोन जो है आपकी प्राइवेसी को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है।
1: देखिए डिजिटल हो चुके हैं हम, और ये होता है कि आप लॉ लेकर आए इंडिया में या फिर जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडर 15 हैं तो आप अलाउ नहीं है सोशल मीडिया पर आने के लिए, लेकिन इंडिया में ये डेटा आपको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर वो दिखाना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है जानबूझकर और लोगों को। तो इसके लिए कोई लॉ है?
0: आज की तारीख में भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित करके इम्प्लीमेंट किया है कि साहब बच्चों को सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं मिलेगा, खासतौर पर जब वो 15 साल के ना हो। हमारे यहाँ कानून कहता है कि साहब जब तक आप 18 के नहीं हुए तब आपको बच्चा माना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कानून भारतवर्ष में नहीं है जो बच्चों को बार करता है, बैन करता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्सेस ना करें। इनफैक्ट ये बैन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज तो हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्रों में डिवाइसेस देने शुरू हो गई। कुछ साल पहले हमारे एक परिचित के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, और वो बच्ची जब 2 महीने की थी तो उसके माँ बाप ने उसको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया? एक आईपैड मिनी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में पहला शब्द नहीं बोला उसने आपने उसको आईपैड दे दिया। जब वो बच्ची 6 महीने की हुई वो आईपैड को प्ले करने के लिए के संदर्भ में अपने पेरेंट्स से ज्यादा आगे निकल चुकी थी। और जब इस तरह की हम चीजें कर रहे हैं, वो दूसरी बात है कि बच्ची का नेगेटिव इतना इम्पैक्ट हुआ उसकी माइंड पर कि उसने पहला शब्द जो उसे 6-7-8 महीने में बोलना था वो उसने 19वें महीने में बोला।
1: स्पीच डिले
0: हो गई। बट द फैक्ट इज कि हम तो आज बिजी है ना, हम कहते हैं भाई बच्चों को चुप कराने के लिए फोन दे दो, फोन देखता रहेगा, गेम्स खेलेगा, ठीक है। मुझे लगता है इससे ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल कोई काम हम कर ही नहीं सकते। अगर आपने अपने भविष्य में अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है तो उसे अनावश्यक तरीके से इंटरनेट के एक्सपोजर से बचाना है। ठीक है, इंटरनेट जरूरी है, लेकिन बच्चों को बताना भी तो जरूरी है कि सोशल मीडिया केवल एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्सी पिक्चर नहीं है। सोशल मीडिया पर हर प्रकार के पीडोफील्स मौजूद हैं, साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हैं, जो बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, उनको आजीवन के लिए

0: आघात करा सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को एम्पावर करना जरूरी है, लेकिन कानून के माध्यम से नहीं, क्योंकि कानून का तो उल्लंघन रोज होगा। बेटर यह है कि माँ बाप की जिम्मेवारी है बच्चों को दोस्त होने के तौर पे बताएं कि साहब ये खतरे हैं, आप बच के रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फंस गए तो हो सकता है आपका आने वाला जीवन एक सदैव प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट हो जाएगा।
1: देखिए, कहा जाता है कि देखिए, गलतियों की माफी हो सकती है, गलत फहमियों की नहीं। अगर आप गलत फहमी का शिकार हो गए,
0: जी
1: फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फील्ड में धुरंधर हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलतियां उनसे हो जाती है, डिजिटल अरेस्ट वो हो जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है, अब उनका पहला रिएक्शन क्या रहना चाहिए? चलो, रिएक्शन तो हमें पता है क्या होना चाहिए, लेकिन पहला मूव क्या होना चाहिए?
0: पहला मूव आपका होना चाहिए,
1: हाँ हाँ
0: कि साहब हो गई गलती, हो गई, जहां से जागूं वहीं से सवेरा समझूं। तो इसलिए तुरंत शोर मचाना है, चुप नहीं बैठना है। कहां शोर मचाना है? आपने इसको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। आपके पास तुरंत सरकार ने दो विशिष्ट विकल्प दे रखे हैं। आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और तुरंत कॉल कर लीजिए, क्योंकि तुरंत कॉल करने पर अगर आपका कॉल लग गया और वो तुरंत आपके बैंक के अकाउंट में देखेंगे, अगर पैसा है जहां पर भी बैंकिंग चैनल में, उसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर देंगे तो हो सकता है 1-1.5 महीने में पैसा वापस आ जाएगा। तो तुरंत आपने कॉल करना है। सेकंड, आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर, यहां पर जाकर रिपोर्ट करिए और बताइए गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट बता लीजिए जितनी जल्दी। पहले हम कहा करते थे कि साहब गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है, आज के तारीख में हम कहते हैं कि साहब आपका गोल्डन आवर पहले 7 मिनट है।
1: अच्छा।
0: अगर आपने पहले 7 मिनट में इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने आपका पैसा ब्लॉक कर दिया, तब आपका पैसा बच जाएगा।
1: अगर आप मिनट आपसे कोई छीन नहीं सकता,
0: कोई नहीं छीन सकता, और अगर आपने 7 मिनट वेस्ट कर दिए तो पैसा सदैव चले जाने वाला है, और एक बार पैसा बैंक अकाउंट से चला गया तो वापस लगभग कभी भी आने वाला नहीं है।
1: बिल्कुल, पैसा तो ऐसी चीज है, जो चला गया तो चला गया। अब देखिए, 90% क्या कहूंगा कि 99% केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी है, जामतारा कह लीजिए या अदर वेब सीरीज, के जो आपके साथ फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है ना, अगर दिल्ली में आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, कहीं गांव देहात में बैठकर पूरी प्लानिंग के तहत आपके साथ ये सारी चीजें जो है इसे अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे पकड़ा जाएगा, किस तरीके से रिकवर किया जाएगा?
0: देखिए, चुनौती यह है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बंदा कहीं पर भी बैठा हुआ किसी और कंप्यूटर सिस्टम में, किसी और शहर में, किसी और राष्ट्र में जाकर टारगेट कर सकता है और पैसे से आपको वंचित करा सकता है। तो अभी प्रॉब्लम यह है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कोई इंटरनेशनल साइबर लॉ नहीं है, ना ही कोई साइबर लॉ ट्रीटी मौजूद है, लेकिन आप क्योंकि जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के कानून आप पर लागू हैं। भारत का अपना विशिष्ट साइबर लॉ है, जिसे हम बोलते हैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000। इस कानून का संशोधन हमने 2008 में भी कर रखा है, और अब तो भारतीय सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत सारे नए साइबर क्राइम्स के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम ज्यूरिसडिक्शन की है, बट हम अकेले नहीं है, सारी दुनिया की भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी हमें तो काम करना है, हमें साइबर क्रिमिनल्स को टारगेट करना है। वो टारगेट तब करेंगे जब हमने पहचान पाएंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन पर कार्रवाई कर पाएंगे। आज की प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून नहीं है, दूसरा डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स नहीं है। आपका नॉर्मल साइबर क्राइम वाला मैटर भी नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, तो अगर आपके साइबर क्राइम वाले मैटर को फैसला आने में 7-8 साल लग जाएंगे, तो लोगों का जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की आवश्यकता है, डेडिकेटेड साइबर मैजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है हर इलाके में, ताकि हर प्रकार का साइबर मैटर केवल उनके पास जाए, उन्हें तुरंत पावर्स दी जाए कि तुरंत पैसा आप ब्लॉक कर सके। देखिए, आज जब मेरे यहां से पैसा जाता है तो मेरा पहली प्रायोरिटी होती है कि साहब मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, बंदा पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए मुझे उससे लेना देना नहीं, आप उसे जेल भेजे ना आप जेल भेजे मुझे उससे भी लेना देना नहीं, मेरा पैसा मुझे दे दें। तो मुझे लगता है आज के सिस्टम में एक खामी है, अगर हम ऐसे प्रावधान ला सके जहां पर लोगों के पैसे को वापस दिलवा सके जल्दी तौर पर, वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा एक इम्पोर्टेंट विकल्प होगा। दूसरा है कि आप ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेवारियों को और परिभाषित करें। वो ये ना कहें साहब मुझे तो कुछ नहीं पता, भाई आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ है, आप बैंक हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ, आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता? और आप

0: कस्टमर को कैसे विवश कर सकते हैं, भाई आप साबित दिखाओ, करके दिखाओ भाई मेरे यहाँ मिसयूज हुआ है, मैं विक्टिम बन गया हूँ, अब तो तुरंत आप मेरी बात मानिए, पैसा पैसा जो ब्लॉक करिए। लेकिन आजकल बैंक्स भी जो है आपकी बात नहीं सुनते।
1: कई केसेस में ऐसा हुआ है कि आप एक व्यक्ति थे, उनके अकाउंट में कहीं से 5-10 हजार रुपए आए, अब वो इसकी कंप्लेंट करने के लिए जागरूक नागरिक की तरह बैंक में गए और बताने के लिए कि देखिए मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए। जब वो बैंक में खड़े हुए थे तभी उनके अकाउंट से और भी पैसे उड़ने शुरू हो गए और फिर वो इंस्टेंट एक्शन आप ले नहीं पाते, आपको पता ही नहीं होता आपके साथ हो क्या रहा है।
0: मुझे लगता है अब हमें समझना होगा कि साइबर क्राइम जिंदगी का डेली का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है
1: जी,
0: तो इसलिए घबराना नहीं है। मैं मानता हूं आज केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें पता है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में पैनिक नहीं करना, जब पता लग जाए शोर मचाना है, रिपोर्ट करना है और जितनी जल्दी रिपोर्ट करना है। लोग क्या कहेंगे इस थॉट प्रोसेस को भूल जाइए, आज अधिकांश लोग हैं साइबर क्राइम के शिकार बनते जा रहे हैं। तो जितनी आप जल्दी एक्शन लेंगे, प्रेफरेबली पहले 7 मिनटों में एक्शन लेंगे, तो संभावित तौर पर आपका पैसा बचने की पूरी उम्मीद है। जितना आपने डिले कर दिया उतना समय आपने साइबर क्रिमिनल को दे दिया। मुझे लगता है मैसेज जो है ना दाना बहुत जरूरी है, तो लोगों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दिशा में।
1: देखिए मास्टरमाइंड हो गए हैं आजकल हर कोई मास्टरमाइंड वाली जो अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल कल ही ना मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और मेरे जो फोन में था वो कॉन्टेक्ट एड ऑन था भी नहीं, मतलब उसके बाद मुझे आता है मैसेज कि ये रहा चालान और हम दोनों का चालान हो गया, वो एपीके फाइल थी। आपके सामने कोई ऐसा केस आया है?
0: आजकल बहुत सारे ऐसे केस हमारे सामने
1: जानना चाहेंगे बिल्कुल,
0: और बहुत सारे केसेस मैंने डील किया है। ऑफ लेट एक ट्रेंड आया है जिसे बोलते हैं व्हाट्सएप वेडिंग कार्ड फ्रॉड। आजकल लोग शादियों के कार्ड तो भेजते नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अब आप अंधाधुंध होकर उस फाइल को खोल देते हैं, द मोमेंट आप खोलेंगे उसके अंदर एपीआई फाइल होती है, ऑटोमेटिकली वो एक मलिशियस कोड आपके सिस्टम में आपके मोबाइल फोन पर रिलीज कर देती है। और वो इस तरीके से होता है कि आपका सारा डेटा उठा लेते हैं, उठा के बाहर भेज देते हैं और आपके पूरे फोन को ब्लॉक कर देते हैं। तो पता लगा आपका कॉन्टैक्ट्स भी गए,
1: आपका फोन
0: कुछ भी नहीं कर पाए। तो आज इस जल्दी में मत रहिए कि साहब ये इसके वेडिंग कार्ड आया है, किसी भी वेडिंग कार्ड को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ना खोलिए, हो सकता है उसके अंदर मलिशियस कोड हो सकता है। दूसरी बात, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं कि आपने सिर्फ एक लिंक को क्लिक किया,
1: ठीक है,
0: लेजिटिमेट लिंक है, क्लिक करते ही आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया, यहां तक कि फोन का जो कैमरा है और फोन का जो माइक है वो उन्होंने हाईजैक कर लिया और पता लगा आपको कुछ भी नहीं लगा
1: और वो जो बातें हो रही हैं वो भी उन्हें सुनाई दे रही
0: हैं, कॉन्स्टेंटली चारों ओर सुनाई दे रही हैं। मेरे पास एक बहुत अजीब केस आया, ये एक दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल का केस है, 11वीं क्लास का बच्चा है,
1: ठीक
0: है। उसको टीचर ने एक दिन झाड़ दिया कि उसका होमवर्क सही नहीं था, तो उसने कहा चलो मैं सबक सिखाता हूँ। वो जाता है नेहरू प्लेस, वहां से कोई डिवाइस कोई प्रोग्राम लेकर आता है। अगली बार जब टीचर आती है और टीचर की एक खास बात थी कि आके अपना पर्स जो है टेबल पर रखती है और फिर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिखने शुरू करती है। तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिख रही है, ये लड़का जाता है और टीचर के फोन पर एक छोटी सी कुछ चीज डाल के आ जाता है,
1: ओके,
0: और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है। 15 दिन बाद एक 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज होती है। उसने क्या किया, एक छोटी सी डिवाइस उस टीचर के पर्स में डाल दी, जो 2400 घंटे सुर सिर्फ जो चीज बोली जा रही थी उसको सुन रहा था और वो डिवाइस ये इन्फॉर्मेशन वापस बाहर भेज रहा था। तो इमेजिन करिए, आप अपना पर्स अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाते हैं, बेडरूम में भी ले जाते हैं, तो जितनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टीचर ने किसी जिसके साथ
1: कर रखी, चाहे आप यूज कर रहे हो ना कर रहे हो,
0: ना कर रहे, आपको पता ही नहीं है। पता लगा आपके फोन आपके जो पर्स के अंदर ये डिवाइस बैठा हुआ है, आपको पता नहीं, 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज रहा है और फिर उसका दुरुपयोग करके उस इंटरनेट पर डाला जा रहा है और उसके आधार पर उसको कट पेस्ट किया गया और उसको जानबूझ के एक डीप फेक बनाया गया और फिर ये मैसेज फैलाया गया पूरे पूरे कंप्यूटर इस स्कूल में कि साहब इस टीचर का फला व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है।
1: ओहो, तो देखिए मतलब आपकी पर्सनल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो गई।
0: मुझे लगता है कि आज जो है ना आपको गुस्सा कम खाना चाहिए, दूसरा बच्चों को डांटना कम चाहिए,
1: खाने की बहुत सारी चीजें,
0: गुस्सा ना खाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता किसने आपसे पंगा ले लिया, आपके यहाँ कुछ डिवाइस डाल दी। और एक और आजकल जो नया केस आ गया है वो ये है कि साहब आप कहीं खड़े हैं, कोई बंदा आता है, बंदी आती है कि सर मेरा ना फोन गुम हो गया, मुझे दीजिए, मुझे
1: कॉल करने दीजिए। बस तो अमूमन होता है, हर किसी के साथ होता है
0: और हम लोग दे देते हैं। पता लगता है वो कुछ नहीं कॉल नहीं करती, वो ये कोड डाल देती है, विद द रिजल्ट आपके सारे कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और सारे आपके मैसेज दूसरे नंबर पर आ जाते हैं।

0: और उसके माध्यम से वो आपके सारे अकाउंट्स को पूरी तरीके से हैक करके मिसयूज कर लेते हैं।
1: ये भी होता है, फलाना कंपनी से हैं सर, सर्वे कर रहे हैं, फोर डिजिट, ये फोर डिजिट जो है ये बहुत सारे बड़ी डिजिट को आपके अकाउंट से गायब कर देता है, तो इस चक्कर में ना रहिए। वेल, ये सारे केसेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्रिकॉशन, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में बात करें तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो आपको अलाउ तो करना ही पड़ेगा, डिसअलाउ आप कर नहीं सकते। इवन बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जरूरत भी हो गई है, देखिए उससे कैसे बचेंगे।
0: मैं आपको ये तो कह नहीं रहा हूं कि आप हिमालय चले जाइए और संन्यास ले लीजिए, आपको इसी दुनिया में रहना है और इसी इंटरनेट का साथ काम करना है, लेकिन सतर्कता सावधानी के साथ आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि आप जो चीज सुन देख या पढ़ रहे हैं उस पर तुरंत विश्वास ना करिए जब तक कि आप उसकी स्वयं पुष्टि ना कर गए हों। दूसरी, आप किसी भी कॉल को आप फॉर ग्रांटेड फॉर फेस वैल्यू पर ना ले लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात करनी है, कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, अपने फोन को कमरे से बाहर रखिए। कमरे से बाहर नहीं रख सकते तो अपने जहां आपकी लोकेशन है वहां से 12 फीट की दूरी पर रखिए ताकि आपकी आवाज, आपकी इंफॉर्मेशन जो है फोन ना उठा सके। चौथी महत्वपूर्ण बात,
1: 12 फीट सर, 1 फीट दूर नहीं रख पाते हैं हम
0: तो, 12 फीट की बात कर रहे हैं ताकि भाई वो आपका सिग्नल कनेक्ट ना कर सके। चौथी बात, हम लोग ना आज इंडिया में दो रेवोल्यूशन को देख रहे हैं, ये दोनों ही क्रांतियां चल रही हैं। पहली है भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वोमिटिंग रेवोल्यूशन। आज सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इंटरनेट पर हो, एआई पर हो। कृपया इस भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा ना बनिए, हर चीज हर आदमी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, एक और महत्वपूर्ण जो क्रांति चल रही है उसे बोलता हूं ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। आज भारत में हर आदमी रिकॉर्ड करने की फिराक में है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है पता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद भूल रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग में रखा रहा हूं, मैं क्लाउड पर डाल रहा हूं। उस दिन मेरे पास एक केस आया बच्चे का जिसने 15 अश्लील वीडियो अपने आसपास की परिचित महिलाओं की बनाई और गूगल ड्राइव पर डाल दी, और फिर गूगल ने जाकर पुलिस को बताया कि साहब देखिए अश्लील कंटेंट आया उस बच्चे को, फिर कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये सोचें कि साहब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट अश्लील कंटेंट आप प्रकाशित क्यों करें, सारी दुनिया को बताने की क्या आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो कहता है कि अगर आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर आप स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या प्रमोट करते हैं,
1: अपलोड करते हैं,
0: खुद भी करते हैं, इनफैक्ट लोग समझते हैं भाई मैं तो अपने आप को बिना तस्वीर के, बिना कपड़ों के
1: कूल
0: कर रहा हूं, क्या कूल
1: मीडिया।
0: भाई आप जब अपनी भी अश्लील तस्वीर खींचते हैं तब भी आप अपना जुर्म करते हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते या पब्लिशिंग या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान नहीं कर सकते। अगर आप एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करेंगे 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी करेंगे यानी कि एक कोई व्यक्ति जो 18 साल से नीचे हो उसकी अश्लील कंटेंट को प्रकाशित करेंगे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा, 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है, नॉन बेलेबल है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो प्लीज आप समझ लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आईज ऑफ लॉ। क्योंकि आप कानून से अनभिज्ञ हैं इसका ये मतलब नहीं कि कानून आप पर लागू नहीं होगा। कानून कहता है कि साहब आप कानून के दायरे में रहिए, कोशिश करिए अपने डिवाइसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बनाएं लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु ना बनाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक हो सके अपनी इंफॉर्मेशन को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें, सारी दुनिया के साथ सारी चीजें साझा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप चीजें अडॉप्ट करें और अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें तो काफी हद तक आप इस तरह के साइबर क्राइम के फ्रॉड्स या उसके विक्टिम्स होने की दिशा में बच जाएंगे।
1: साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए, कोई काम करता हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर अपने प्रोडक्ट को रिवील करना चाहता हो आगे आकर।
0: मुझे लगता है कि आज जिंदगी में अगर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कोई वेक्टर है तो वो साइबर सुरक्षा है। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि साहब मैंने तो डिवाइस में मुझे जो करना कर दूं लेकिन कुछ गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। भाई सरकार तो अपना काम कर ही रही है लेकिन साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी भी तो है। हमें समझना है कि हम एक बहुत बड़ी चेन की कड़ियां हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी, और हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चेन की

0: सबसे कमजोर कड़ी ना बने। तो साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के रूप में अडॉप्ट करें, अनसिक्योर साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज को, हैबिट्स को बिल्कुल इग्नोर करिए, पासवर्ड शेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपना फोन किसी को भी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी और का यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तब आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं जिसमें 3 साल की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है।
1: तो ऐसे में कई केसेस में हुई है लोगों को,
0: बहुत सारे केसेस में हमने प्रोसिक्यूशन करी है जहां पर मेरा पासवर्ड किसी और व्यक्ति ने इस्तेमाल किया और मैंने शिकायत करी और फिर केस दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई शुरू हुई। भाई सवाल कानून कहता ना कि पासवर्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अगर आपको दे भी दिया तो ये तो मेरे घर की चाबी है ना,
1: शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है मतलब,
0: बिल्कुल नहीं। आपको मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया कि साहब मेरे घर की चाबी मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करके घुस घर के अंदर घुस जाओ और जो लेना है लेके चले जाओ। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सब भारतवासियों को निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, धारा 21 भारतीय संविधान के तहत।
1: चलिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि नहीं पहुंच पाता है वहां पर कहीं ना कहीं बास जैसी पैनी निगाहें पहुंच जाती है काफी सारे लोगों की। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है पवन जी कि आप प्रॉब्लम में, आपको पता है कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए, आप बैंक के पास जा रहे हैं और आप समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं आइडिया है, लेकिन मेरा पैसा लौटा दो। और ऐसे में बैंक मैनेजर के साथ आपकी काफी वार्तालाप होती है, काफी बहस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पाते हैं इन चीजों को आप।
0: उसका रीजन ये है कि बैंक मैनेजर के हाथ में कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आपके यहाँ पैसा जाता है आपका पहला विकल्प है आपने 1930 कॉल करना है, ताकि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई पैसा है तो पुलिस उसको तुरंत फ्रीज कर सके। दूसरा, आपने रिपोर्ट करनी है cybercrime.gov.in। वो जैसे आप रिपोर्ट करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप बैंक के साथ शेयर करिए ताकि बैंक उस पर आगे कार्रवाई हो सकता है। आप जाके वहां लड़ेंगे, उन पर विवाद करेंगे, साहब मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, लिखतम के आगे बख्तम की कीमत नहीं होती। तो आपकी लिखत में जब कंप्लेंट होगी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, वो अगर आप लिखत में बैंक को देंगे तो बैंक तुरंत एक्शन करेगा।
1: वो जवाबदेही वाला प्रोसेस होता है ये कितने टाइम का होता है? देखिए, अगर नहीं आता है जवाब तो क्या कर सकते हैं आप?
0: आपको ना कॉन्स्टेंटली पैरवी करनी पड़ेगी। पहली बात, आपने शिकायत करी, उसके हर 2 दिन बाद आपने उस शिकायत का आपने पूछना है कि भाई क्या हुआ,
1: अपडेट है।
0: जैसे आप अगर आप cybercrime.gov.in पर जाएंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको एक SMS आ जाएगा कि फलां पुलिस ऑफिसर है, ये इसका नंबर है, ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब आप हर रोज एक धर्म बना लीजिए कि आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करना है, भाई मेरा क्या हुआ क्या हुआ। वो कहते हैं ना, पैरवी ही आपको वहां तक ले जाएगी जहां पर मुकदमा भी नहीं ले जा सकता। जितनी जल्दी आप पैरवी करेंगे, बैंक के साथ पैरवी करेंगे, उतनी जल्दी आप सीरियसनेस अपनी शो कर पाएंगे और उतनी जल्दी हो सकता है आपको रिलीफ भी मिल जाए। आज आप जैसे, हम जैसे लोग ही सबसे वल्नरेबल टारगेट्स हैं। एक बार अगर हम जाग जाएंगे इस चुनौती के प्रति, तो फिर एटलीस्ट हम काम करना शुरू कर देंगे। दैट इज 50% ऑफ द बैटल वन। लेकिन अगर हम इसी मस्ती में होंगे, साहब मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
1: स्मार्ट और ओवर स्मार्ट होने में थोड़ा सा फर्क है, राइट?
0: ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मुंह की देगा और अक्सर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा।
1: बिल्कुल, देखिए इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति फंस चुका है, उसे पता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प है नहीं, मैं सिर्फ कंप्लेंट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए कोई लीगल रेमेडीज?
0: देखिए, अगर आप तुरंत शिकायत करते हैं तो पहली रेमेडी वो है, क्योंकि उस शिकायत के एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है।
1: जी,
0: अगर आप तुरंत 1930 पर कॉल करते हैं तो वो तुरंत देख लेते हैं कि आपके बैंकिंग चैनल में कोई पैसा है तो नहीं है, अगर है तो ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक कराइए अपना पैसा ताकि अल्टीमेटली 5-6 हफ्ते में पैसा वापस आ जाए।
1: जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है।
0: हाँ, और जो तीसरी बात, अगर आपको लगता है पुलिस एक्शन नहीं करती, तो आप अपने लोकल थाने में, अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाके एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें आप दिशा निर्देश दें कि साहब आप मेरा पैसा वापस दीजिए। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी भैया उस अक्यूज के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। अगर आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन मूव करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अदालत डिसाइड करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन पहले चली गई तो जितना पैसा फ्रीज हो गया उसमें पहला अमाउंट आपका जाएगा, आपके अमाउंट खत्म होने के बाद किसी और को दिया जाएगा। तो जागरूकता इटलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लीगल रेमेडीज आपके पास उपलब्ध हैं। ये तमाम सारी घटनाएं जो हैं ऑफेंसेस बन जाती हैं भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में। आवश्यकता है आपको सतर्क, जागरूक और सावधान रहने की।
1: देखिए, किसी व्यक्ति ने आपके साथ डिजिटल अरेस्ट किया और जब वो मुकदमा वहां तक पहुंचा और अगर उसने वो पैसे खर्च कर दिए या उसके अकाउंट में है नहीं, तो इस केस में क्या होता?
0: फिर देखिए, उस व्यक्ति के बरखिलाफ मुकदमा चलता है और अल्टीमेटली उसको

0: सजा मिलती है और तब तक कानून का ये भी अधिकार है कि अगर उसके पास कोई भी एसेट्स हैं तो उन एसेट्स को भी फ्रीज किया जा सकता है और उनको भी सेल करके वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो कानून के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अक्सर लोगों तक पहुंचने का पहला चैलेंज होता है। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि साइबर क्रिमिनल वो कौन सा था जिसने आपको डिजिटल अरेस्ट किया, क्योंकि देखने में कुछ और हो सकता है, वास्तविक तौर में कुछ और हो सकता है। और आज की तारीख में तो डिजिटल अरेस्ट में एआई का बहुत ज्यादा दखल अंदाज हो गया है। आप जो देख रहे हैं वो व्यक्ति वास्तविक तौर पर व्यक्ति नहीं है, वो एआई द्वारा जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो है। अब डीप फेक वीडियो अगर है तो फिर आप उस साइबर क्रिमिनल तक कहां पहुंचेंगे कि किसने अपलोड किया, कौन था उसका मास्टरमाइंड उसके पीछे। तो चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला कदम होता है उठ के जागना। और हमें ये लगता है कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, तो एटलीस्ट उठ जाइए, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करेंगे तो कानूनी प्रकरण आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला।
1: अब सरल भाषा में पूछना चाहूंगा, जितने भी स्कैमर्स हैं उनको पहचानने का, या स्कैम आपको ईमेल आ रही है, इन सबको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे सिंपल
0: तरीका, कुछ भी चीज आपको जो बताती है जो टू गुड टू बी ट्रू है तो एक्चुअली में टू गुड टू बी ट्रू होता है। कभी लगता है सपनों जैसे, भाई मेरे को खबर आई कि आरबीआई मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है लॉटरी के तौर पे, भाई मुझे 50 लाख क्यों देगा? लेकिन लोग जो है भेज जाते हैं कि साहब मैं ही दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं कि मुझे आरबीआई 50 लाख रुपए की लॉटरी दे रहा है। तो पहला इंडिकेशन है कि साहब ये साइबर फ्रॉड है, ये साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है, तुरंत उस कम्युनिकेशन को डिसरिगार्ड करिए, भूल जाइए कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं। सॉरी, आज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज आप प्रोटेक्टेड होंगे तो कल नया दिन होगा, आप फिर कुछ काम कर पाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि जहां पर आपका मन ठुके कि साहब ये ठीक नहीं है,
1: कुछ घपला है,
0: द मोमेंट ये मन है ना, इस मन का विश्वास जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे को बचाएगा, हमारी गट फीलिंग हमेशा बचाएगी। हमारा दिमाग तो फिर भी बता देगा, ओहो चले यार इतने पैसे मिल रहे हैं, करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है,
1: क्या जाता है।
0: लेकिन अगर आपने अपने आप को बांध लिया कि साहब भैया मुझे मिलना तो उतना है जितना मेरे माथे पे लिखा हुआ है, तब मैं इन छोटे प्रलोभनों में नहीं पड़ूंगा।
2: देखिए, एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भारतवर्ष में कोई डेडिकेटेड आज की तारीख में लॉ लागू नहीं हो रखा डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो हमारा डेटा बिकता है नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स में, ऑनलाइन मार्केट्स में। और हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा 13 नवंबर 2026 को, लेकिन उससे पहले आपके डेटा की खरीद फरोख्त बहुत चल रही है। मेरे पास तो अब कुछ क्लाइंट आते हैं जो डेटा मर्चेंट्स हैं। मतलब मैंने कहा भाई ये क्या चीज है,
1: वो कहते हैं मैं भी नया सुन रहा हूँ वर्ड।
0: मैंने कहा क्या होता है डेटा मर्चेंट? वो कहते हैं सर एक नया बिजनेस मॉड्यूल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम 20 या 25 लोगों को रिक्रूट करते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे लिए काम करिए, हम आपको मंथली सैलरी देंगे, आप हमसे सैलरी लीजिए, लेकिन एक भी दिन हमारे दफ्तर मत बताइए, आप जाके दूसरी कंपनियों में जाइए और जाके अपना जॉब लीजिए, आप वहां नौकरियां करिए, वहां से भी पैसे लीजिए, उनका डेटा लीजिए, वो डेटा चुरा के हमें दीजिए, हम वो डेटा की क्लीनिंग करेंगे, उसको सैनिटाइज करके और करके पूरे मार्केट में बेचेंगे। तो ये एक नया प्रकार का मॉडल इंडिया में आ गया है। दूसरा एक नया मॉडल आ गया है, वो है साइबर क्राइम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। साइबर क्राइम आज इतना ज्यादा पनप चुका है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में बन चुका है। यहां तक पहले हम बात करते थे जामतारा की, फिर बात करने लगे हम नू की, भरैच की और अदर इंस्टीट्यूशंस की। आज तो हर गांव में, हर छोटे शहर में आपको साइबर क्राइम के अड्डे मिलते हैं। लोगों को पता है कि भैया पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका जो है साइबर क्राइम है। और दूसरी बात, भाई भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन तो होती नहीं है। 2003 में मैंने भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन कराई थी, जिसमें मैं वकील था
1: 2003 में
0: कंप्लेनेंट की तरफ से। आज 23 साल हो चुके हैं, और उस जमाने में भी हमने जज को बोला कि साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप सजा दें, लेकिन जज ने कहा साहब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, चलो उन्हें प्रोबेशन पे 1 साल पे छोड़ देते हैं। वो कन्विक्शन थी, उसके बाद कुछ कन्विक्शन हुई 2008 तक, लेकिन 2008 में हम लोगों ने एक बुनियादी गलती कर ली। हम लोगों ने आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, और इन संशोधनों ने 2-3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के बाकी तमाम सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बना दिया। यानी कि
1: आज 2-3 वो कौन से?
0: 2-3 जैसे साइबर टेररिज्म हो गया, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, जैसे एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम आज बेलेबल हैं। मतलब कि अगर मैं साइबर क्राइम करता हूं तो मुझे बेल अधिकार के तौर पर उपलब्ध है। तो होने क्या लगा कि लोग साइबर क्राइम करते डर

0: आते दरगुस्तानी बेल से बाहर आते, अपने बरकरार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिलीट करते और फिर मस्ती से तमाशा देखते, क्योंकि अगर एविडेंस ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो सजा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर ही सजा हो सकती है। तो तभी हम देख रहे हैं कि 2008 के बाद से भारतवर्ष में आज तक साइबर क्राइम का एक अकाल आ चुका है कन्विक्शंस को लेकर। तो इसलिए लोगों को लगता है भाई क्या फर्क पड़ता है, मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लोग अंधाधुंध होके हुए साइबर क्राइम को अडॉप्ट कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि साहब इस भंवर में जो फंस गया वो फंस गया, लेकिन 99.9% लोगों को लगता है भाई हम तो भारी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशियो है वो 0.1% से भी नीचे है। तो जब अगर आप देख लीजिए कि 100 मुकदमे होते हैं और उन 100 मुकदमों में 0.1% केसेस में ही सजाएं होती हैं, वजह सजा होती ही नहीं है, क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा तो सजा नहीं होगी।
1: तो ऐसे लोगों को काउंटर कैसे किया जाए?
0: तो मुझे लगता है काउंटर करने के लिए आपको एक लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग अवेयर हो जाए नए उभरते साइबर क्राइम के को लेकर। और आज तो नया प्रॉब्लम है, आज एक नए प्रकार का साइबर क्राइम उत्पन्न हुआ है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम, AI क्राइम।
1: उससे तो सब डरे हुए आने वाले समय में, आई गेस।
0: AI तो इतना खतरनाक हो गया है कि आपको कुछ नहीं करना, मुझे आपको तंग करना है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज की 3 सेकंड का सैंपल चाहिए, आपके वीडियो का 5 सेकंड का सैंपल चाहिए बस,
1: और कुछ नहीं चाहिए। हाफ एन आवर का और पूरे घंटे का,
0: पूरे घंटे का मैं आपके आपके बरखिलाफ एविडेंस बना सकता हूं। मेरे पास उस दिन एक क्लाइंट आया, उन्हें कहा साहब मेरी शादी हो रखी है, 10 साल हो चुके, मेरी वाइफ से मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तलाक लेना है। तो हमने कहा भाई क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए तो सही।
1: मैंने
0: कहा सर मैं आपको एविडेंस दिखाता हूं। उसने मुझे एविडेंस दिखाया और वो वाइफ इतनी बदतमीजी तरीके से हस्बैंड को बात कर रही थी, मुझे लगा कि साहब इन दोनों का रहना बिल्कुल संभव नहीं है, तो चलो हम डिवोर्स फाइल करते हैं। मैंने डिवोर्स पिटीशन बना दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना वाइफ की, वो जरूर लगाइएगा अदालत में। तो हमने लगाना शुरू किया और साथ साथ सर्टिफिकेशन डालनी शुरू करी। तो जब सर्टिफिकेशन में उससे सवाल पूछे कि भाई क्या कहाँ हुआ, क्या पता लगा, किस डिवाइस से हुआ, अल्टीमेटली उसके मुंह से निकल गया सर मैंने इसे AI से बनाया था। तो आज ये
1: मतलब AI के थ्रू आपने किसी को पूरे तरीके से मतलब बहुत गलत ठहरा दिया।
0: एक पति ने अपनी पत्नी के बरखिलाफ AI के माध्यम से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए और उसको आधार बनाते हुए मुकदमा दाखिल करने की प्रयास किया। वो तो जब मुझे रियलिटी पता लगी हमने कहा साहब हमें माफ करिए, हम ऐसे
1: लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता।
0: हो सकता है अगर शिकायत हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर शिकायत होती नहीं, और शिकायत हो भी जाए तो अक्सर FIR नहीं होती। प्रॉब्लम क्या ना कि अधिकांश तौर पर पुलिस आपके केसेस दर्ज नहीं करती, अगर दर्ज करती भी है तो उन केसेस में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम सही तरीके से एकत्रित नहीं कर पाते। एकत्रित भी कर पाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही तरीके से हम अदालत में प्रस्तुत साबित नहीं कर पाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत। तो बुनियादी तौर पर कितना ही बेहतरीन आपका केस क्यों ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप साबित ना कर पाए तो सजाएं नहीं होंगी।
1: ये दोनों तरफ से देखिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी कह सकता है कि मैं AI, ये तो AI है सर।
0: आज की तारीख में तो स्टैंडर्ड डिफेंस आ गया ना, कि अगर आपने मेरे बच्चा वैलिगेशन लगाई आई विल से कि सॉरी ये तो डीप फेक है, मैंने तो बनाया नहीं,
1: मेरा है ही नहीं, अब मेरी आवाज ही नहीं है,
0: मेरी आवाज ही नहीं, आप साबित करते दिखाइए। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि प्रदूषित हो रहा है पूरा वातावरण
1: जी,
0: हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशन है वो झुठलाई जा रही है, झूठी इन्फॉर्मेशन भी है, फेक इन्फॉर्मेशन भी है, रूमर्स भी हैं और डीप फेक इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए इस पूरे अंदाज में अदालतों के सामने भी चुनौती है भाई किस प्रकार की एविडेंस या किस प्रकार की जानकारी पर वो विश्वास करेंगे और किस तरह पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लेकर कुछ नए कानून बनाए हैं, नए प्रावधान है, लेकिन वो 2023 का लॉ है। आज 2026 ने AI ने आके उलट पुलट कर दिया है। आज AI के द्वारा जन्मित या जेनरेटेड जो एविडेंस है उसको साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, उसके लिए नए कानूनी प्रावधान आने की आवश्यकता है। फॉर्चुनेटली अब खबर आई है
1: ओनली अपग्रेड करना पड़ेगा
0: जी हाँ। तभी अब खुशखबरी यह है कि अब सरकार की तरफ से खबर आई है कि सरकार अब एक नई डेडिकेटेड लॉ पर काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो मुझे लगता है ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा। साइबर क्रिमिनल्स आज की तारीख में पुलिस से लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं और AI आने के साथ साथ 50 कदम तो छोड़िए वो 500 कदम आगे होने वाले हैं।
1: और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप उस व्यक्ति की सहमति भी नहीं ले रहे हैं। आप बहुत सारे एक्टर्स के वीडियो देख सकते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है या उनकी वॉइसेस कहां कहां पर चल रही है, और फैंस को भी लगता है कि हाँ चलो उन्हीं की आवाज है।
0: यही तो प्रॉब्लम है। तो अगर आप तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, एक्टर हैं, तो आप अदालत जाएंगे और अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कराएंगे।
1: राइट।
0: लेकिन आम जनता
1: हम जैसे लोग क्या करें।

0: करेंगे. तो यहां पर मुझे लगता है कि नॉर्वे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है. इस नॉर्वेजियन कंट्री ने एक नया लॉ बनाया है कि साहब आप हम अपने कॉपीराइट लॉ में एक संशोधन करते हैं. हर व्यक्ति को अधिकार है अपने पर्सनालिटी राइट्स का, यानी कि आपको अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है. आपकी पर्सनालिटी है, मैं ऐसे बोलता हूं,
1: ये मेरी आवाज
0: ऐसी है, मेरी शक्ल है, ये मेरा अंदाज है, ये इस पे मेरे ऑटोमेटिक राइट्स होने चाहिए,
1: कॉपीराइट
0: होने चाहिए ऑब्वियसली. और मुझे ये ताकि कोई उसका हनन करता है तो मैं उसके बरखिलाफ जा सकूं. मुझे लगता है इस तरह के प्रावधान अगर भारत में आ जाए तो भारतवासी के हाथों को हम ज्यादा सशक्त कर पाएंगे. दूसरा मुझे लगता है कि डीप फेक को लेकर डेडिकेटेड लीगल प्रोविजन लाने जरूरी है. और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एआई का इतना महत्वपूर्ण दुरुपयोग हो रहा है तो एआई की जवाबदारी भी तो होनी चाहिए. एआई को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि साहब ऐसा है, एआई का दुरुपयोग अगर है तो कौन जिम्मेवार है. कंपनियां तो कहती है कि साहब ये ले लीजिए, आपको मैं एआई ब्लैक बॉक्स के तौर पर दे रही हूं, इस्तेमाल करना या ना करिए. अब तो बल्कि फॉरेन कंपनियों ने बहुत बड़ा एक नया तंत्र शुरू किया है.
1: जी क्या है
0: वो? ये है कि वो 399 का तंत्र. वो क्या करते हैं कि आपको अपने पूरे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज एक महीने के लिए 399 रुपए के पैक में दे देते हैं.
1: सिर्फ
0: अब 399 रुपए में तो आपको दो पिज्जा भी अच्छे नहीं मिलते,
1: नहीं मिलते हैं सर.
0: और 399 रुपए में वो आपको पूरे महीने भर के आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं, आप डेटा का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को, अपने एल्गोरिदम्स को और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं, और फिर वही इंप्रूव्ड वर्जन्स आपको दोबारा बेचेंगे. तो मुझे लगता है कि एआई को अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है. इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी एक एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क प्रकाशित किया है जो विभिन्न प्रकार के कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है कि साहब इन इन बेसिस पर आप एआई को जिम्मेवार या अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. लेकिन बात यहीं पर ही थम नहीं रही है. अब एजेंटिक एआई आ गया है, यानी कि लोग अब एआई एजेंट्स इस्तेमाल करने लग गए हैं. आप सिर्फ उन्हें एक कमांड दे दीजिए, उसके बाद वो कमांड को पूरी तरीके से खुद डिवाइड करेंगे, सब टास्क को लेंगे और फिर वो उसके ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. उनको जिम्मेवार कैसे ठहराया जाए, इसके लिए भी अभी हमने एक ग्लोबल एजेंटी किया है लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया है. तो काफी सारा काम करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि साहब हम लोग कॉन्स्टेंटली एक जो दौड़ता हुआ शेर है उसकी सवारी कर रहे हैं. हम इस शेर से नीचे तो नहीं आ सकते, तो कॉन्स्टेंटली इस शेर की सवारी करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्स्टेंटली ढालना पड़ेगा नए नए समय, नए नए टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के साथ साथ, ताकि हम और हमारा डेटा उनका संरक्षण हो सके.
1: बिल्कुल, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रौनक आ जाती है बड़े बुजुर्गों के आ जाने से. अक्सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले वो आपने काफी सारे मैसेजेस देखे होंगे और उनके साथ जब डीप फेक कुछ होता है ना तो वो सबसे पहले घबराते हैं. ऐसे में आपको घबराना नहीं है, लेकिन सर बहुत ही तेज तर्रार तरीके से आपने सारे जवाब दिए हैं. चलिए रैपिड फायर की तरफ लेकर चलता हूं आपको, ठीक है
0: जी.
1: और सबसे पहला सवाल मेरा ये है रैपिड फायर राउंड में, पासवर्ड और पास फ्रेज, विच वन इज सिक्योर?
0: पास फ्रेज, क्योंकि पास फ्रेज ज्यादा बड़ा होता है, पासवर्ड छोटा होता है. और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप पास फ्रेज भी बनाना है तो अपने लोकल भाषा में पास फ्रेज बनाइए
1: ताकि कोई उसे डिकोड ना कर
0: सके. हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने पास फ्रेज का एक नया अध्याय में सिखाया. उसने कहा सर मैं पास फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ. और मैंने कहा आप बताइए आपका करंट पास फ्रेज क्या है. उसका जवाब था मेरा करंट पास फ्रेज है मैं चलता जा रहा हूँ #@.
1: क्या बात
0: है, सब अंग्रेजी में, मैं मीन्स MAIN चलता CHLT है. इतना लंबा आप पास फ्रेज करेंगे ताकि सिस्टम या हैकर जो है आपके पास
1: सोच ही ना सके
0: उसे ब्रेक ही ना कर सके.
1: बिल्कुल, कहां जा रहा है पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड कहीं भी जाए, पास फ्रेज कहीं भी जाए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और VPN यस और नो, सेफ है VPN?
0: बिल्कुल सेफ है. VPN का इस्तेमाल करना जरूरी होता है ताकि आप अपनी लोकेशन की, अपने डेटा का संरक्षण कर सके.
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है.
0: दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फेस में फिर भी गड़बड़ की जा सकती है. ये फिंगरप्रिंट दुनिया भर में एकमात्र ऐसा प्रिंट है.
1: ये तो हो सकता है ना बियर्ड आपकी बढ़ जाए, कहीं
0: आपकी बियर्ड बढ़ जाए, आपकी शेयर. अब तो क्या ना अडोब से फोटोशॉप से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से फोटोशॉप करना मुश्किल होता है. तो फिंगरप्रिंट कंटिन्यूज टू बी नंबर वन,
1: सेफेस्ट है. वन साइबर सिक्योरिटी हैबिट जो हर किसी को अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए, एक ऐसी हैबिट जो साथ हो आपके.
0: मैं आपको एक नहीं दो हैबिट्स बताता हूं.
1: ओके.
0: एक, कंजूस हो जाइए. दूसरा, शकी हो जाइए. कंजूसी अपने डेटा को लेकर, अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए, किसी और के साथ नहीं. और शकी, हर जानकारी को शक के दृष्टिकोण से देखें, जब तक कि

0: स्वयं उसकी पुष्टि आपने ना कर रखी हो, तो शकी हो जाइए और कंजूस हो जाइए, काफी हद तक आप साइबर क्राइम से बच
1: जाएंगे। मतलब थोड़ा सा डेली सोप वाले एक्टर की तरह आपको काम करना पड़ेगा। वेल सर, मैं आपको शुरुआती दौर में कहना भूल गया, यू आर सो लाइक हैंडसम, एंड यही कहना चाहूंगा, बहुत स्मार्टनेस के साथ सारे जवाब दिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज दोहरा रहे, उससे बचना चाहिए।
0: एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं वो अपने स्मार्टफोन को रिलाई करते हुए कर रहे हैं। हमारा स्मार्टफोन, हमारा अपने जब आप फोन स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो ऑनलाइन खींचते हैं और अपलोड करते हैं, तो रिमेंबर करिए वो नॉर्मल फोटो नहीं है, वो स्मार्ट फोटो है। उसमें आपका लैटिट्यूड है, आपका लॉन्गिट्यूड है, आपका मेटाडेटा है, आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन है, वो तमाम सारी चीजें जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं।

0: आपका डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, वो तमाम सारी चीजें जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया भर के चोरों को आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब मैं यहां लोकेशन हूं, मेरी यहां लोकेशन है, आपने आके मुझे अटैक करना कर लीजिए। तो कृपया अपने स्मार्टफोन के द्वारा खींची हुई फोटो तब तक इंटरनेट पर मत डालिए जब तक आप उसे सैनिटाइज ना कर सकें और उसका मेटा डेटा पूरी तरीके से
1: सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
0: सैनिटाइज करने के बहुत से टूल आ जाते हैं जो आपका जो मेटा डेटा होता है उसमें से निकाल देते हैं, आपकी लोकेशन निकाल देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड।
1: अगर मैं लोकेशन डाल नहीं रहा हूं तो भी लोगों को लोकेशन पता लग जाए
0: ऑटोमेटिकली। मैं आपके यहां बैठा हूं, आज आपने मेरे फोन से तस्वीर खींच ली, मैंने अपलोड करी, मेरे स्मार्टफोन वाली तस्वीर में आपका लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, मेटा डेटा आ गया, मेरे मोबाइल फोन का क्या डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, किस प्रकार के फंक्शन है, वो तमाम सारी चीजें आ गई,
1: तुम्हें जाकर
0: बहुत सब आ गई और आपने बिना सोचे समझे उसको ऑनलाइन कर दिया। ये तो वही हालत हुई ना कि हमारे क्लाइंट थे ये डेल्टा वेव के बाद बहुत तंग आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो भैया हम वेकेशन करने चलते हैं, तो कहां चले, मनाली चलते हैं, लेकिन मनाली तो कभी गए नहीं थे, तो लोगों से पूछा भाई क्या करें, तो लोगों ने अलग अलग सजेशन दिया ऑनलाइन, तो उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग निर्णय लिया कि हम हर घंटे जहां पे भी होंगे हम एक वीडियो ब्लॉग डालेंगे। तो वो यहां से मूर्थल गए, वहां से वीडियो ब्लॉग डाला, ऊपर रोहतांग पास गए, वहां ब्लॉग डाला। 8 दिन बाद जब वो घर वापस आते हैं गुड़गांव में तो पाते हैं उनका सारा घर सफा चट्ट हो चुका है, एक भी चीज घर में नहीं थी, क्योंकि चोरों को उन्होंने
1: पता लग गया, आमंत्रित किया है,
0: आमंत्रित किया, उन्होंने बताया कि साहब ये तो वहां पर अभी रोहतांग पास पर हैं, ये इनके लैटिट्यूड, इनका लॉन्गिट्यूड, अभी तो आ ही नहीं सकते।
1: मतलब चोर भी बैठे होंगे, कह रहे होंगे रुक जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी दूर है,
0: अभी 8 दिन है हमारे पास, आराम से चोरी करते हैं, घर से सारी चीज निकाल लेते हैं। तो कोशिश करें ये तमाम सारी चीजें अपनी गर्दन अपने हाथ काट करके साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में ना दे दीजिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग आप ही के खिलाफ होने वाला है।
1: क्या बात है, इनकॉग्निटो मोड ये कितना सेफ है?
0: बिल्कुल सेफ नहीं है, इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपको एक
1: झांसा दे रहा,
0: झांसा अपना अपने मन को बहलाने का एक और तरीका है। रियलिटी इनकॉग्निटो मोड कुछ नहीं होता, आज की साइबर सारे चाहे आपके ब्राउजर्स हों चाहे आपके सर्विसेज हों, इनकॉग्निटो मॉड्यूम के मोड के माध्यम से आपकी तमाम सारी जानकारी फिर भी ले रहे हैं। तो इस दुनिया में जो चीज मौजूद नहीं है उसकी आप उम्मीद ना करें, और इनकॉग्निटो मोड के बेसिस पर वो कुछ गलत काम ना कर दें जो आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकते हैं।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि कहीं ना कहीं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सुरक्षित रखते हैं।
0: बिल्कुल भी नहीं, सबसे बड़ा मिथ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम की चीज पूरी सुरक्षा देते नहीं है, वो तो एक छोटी सी बात बताते हैं कि साहब ये हमारे सॉफ्टवेयर हमारे डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस का एंटीवायरस या वायरस आपके सिस्टम में नहीं है। मुझे लगता है आपको ब्रॉड चीज देखनी है। देखिए अगर मैं सिर्फ पूरे अपने घर में जिसमें 5 दरवाजे हैं एक ही दरवाजे पर ताला लगाऊंगा बाकी 4 खुले रखूंगा तो गलती मेरी है, क्योंकि चोर उन 4 दरवाजों से मेरे घर के अंदर आएंगे। तो कोशिश करें एंटीवायरस के साथ साथ और स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करें, अच्छा फायरवॉल रखें, साथ ही साथ अपनी सेल्फ कंट्रोल करें, अपनी जानकारी शेयर ना करें। हमारे पास एक केस आया जहां पर एक बंदे ने अपने ना सेंसिटिव पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर किया
1: और वो बंदा बहुत ज्यादा क्रेज नहीं हो गया है,
0: तो वो बंदे की मुझे पता ही नहीं हालत क्या थी भाई। जनवरी में शादी हुई और शादी के लिए हनीमून गए आप गोवा और हस्बैंड वाइफ ने एक पैक्ट किया,
1: आई लव माय हस्बैंड या आई लव माय वाइफ,
0: उन्होंने पैक्ट किया, पैक्ट ये किया कि साहब हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के मोमेंट्स अपने फोन पर रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आजीवन फिर देखेंगे और आनंद लेंगे। और उसके 15 दिन बाद लड़ाइयां शुरू हो गई और दोनों के बरखिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंटें शुरू हो गई कि इन्होंने हमारे प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें जो है उसकी खींच करके
1: दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाला
0: और फिर अल्टीमेटली तलाक शुरू हो गया। तो बॉटम लाइन है भाई वो चीज क्यों करनी है जिसके लेके कल को प्रॉब्लम होने वाली है।
1: और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है सर कि अगर आपने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया सबसे पहली बात तो नहीं करना चाहिए,
0: बिल्कुल नहीं,
1: लेकिन उसके बाद भी अगर आपका फोन चोरी हो गया तो सारा डेटा रिवील्ड हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: सच्चाई है,
0: बुरी सच्चाई है। और दूसरी बात अगर आप सोचते हैं कि सुरक्षित तौर पर मैं इसको बैकअप ले लेता हूं तो मेरा बैकअप ऑनलाइन चला गया तो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चला गया, एक तो सर्विस प्रोवाइडर मेरी शिकायत करेगा, दूसरा कल मेरी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो सकती है, तीसरा कल को मैं अपनी जॉब बदलता हूं दूसरी अपॉर्चुनिटीज पर जाता हूं ये चीज मेरे को आड़े आएगी, और चौथा मेरी प्राइवेसी तो पूरी तरीके से लुप्त हो जाने वाली है। तो ऐसा काम करें क्यों? मुझे लगता है कि वो चीज ना करें जिसका एक इम्पैक्ट आप पर आपके फ्यूचर पर आ सकता है। और मुझे लगता है अपने पर्सनल मोमेंट्स को तो कभी भी डिवाइस के साथ कभी कैप्चर करना ही नहीं चाहिए चाहे कितनी भी अच्छी इंटेंशन क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका दुरुपयोग होगा। अगर आपकी गर्दन है तो कोई ना कोई तो उसको दबाएगा, तो अपनी गर्दन किसी के हाथ में दे क्यों, बुनियादी सवाल ही खड़ा उठता है।
1: और सही बात यह है कि देखिए सबसे साफ बात यह है कि पूरी लाइफ फिर लोगों की स्पॉइल हो जाती है,
0: पूरी लाइफ लोगों की पूरी लाइफ, उनकी मेंटल मेकअप, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाती है, क्योंकि साहब आपने तो कुछ चीज फन में करी और उसका इंपैक्ट आ गया जो आजीवन के तौर पर आ गया, और इमेजिन वो

0: कंटेंट आपके बच्चे देखेंगे, वो कंटेंट आपके परिवार के मित्र देखेंगे, तो वो तो आपको एक आजीवन के तौर पर
1: और वो लाइफ लॉन्ग रहने भी वाला है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, शायद वो सर्वर से डिलीट कराने के लिए आपको फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता।
0: और कभी भी कुछ चीज डिलीट नहीं होती, इस मिथ्या से बाहर निकल जाइए।
1: अच्छा,
0: इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है। एक बार आपने इंटरनेट पर कुछ चीज डाल दी तो वो सदैव के लिए वहां रहने वाली है। और कोई ना कोई आदमी जो उस फिराक में है, उस ढूंढ में है, तो कहीं ना कहीं ढूंढ करके आपको आपके यहां पहुंच ही जाएगा और इन्फॉर्मेशन ले ही लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेट को आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, खासतौर पर ये जानकारी तो बिल्कुल ना शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी के भी हाथ में आएगी, चाहे वो साइबर क्रिमिनल हो या हैकर हो, वो सबसे पहले इस जानकारी को अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर बेच देगा। और फिर एक बार आपका कॉन्टेंट अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर आ गया तो उसमें से बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है।
1: बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है। वेल, जाने से पहले सर दो टिप जो आप लोगों को देना चाहे।
0: जाने से पहले केवल दो टिप मैं जो आपको देना चाहूंगा। एक ये, दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। इस दौर में जितना आप अपने डेटा को समेट के रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अंधाधुंध लोगों को डेटा बांटने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए। मान के चलिए मुझ पर आक्रमण तो होगा ही, तो इसलिए जब आक्रमण हो तो पैनिक नहीं करना,
1: तो शील्ड हो।
0: इंपॉर्टेंट चीज है कितनी जल्दी आप आक्रमण के बाद पुनः नॉर्मलसी पर आ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अच्छे बैकअप्स रखिए, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स रखिए, अपनी अनावश्यक जानकारी इंटरनेट पर डिवाइसेस पर शेयर ना करिए। और अल्टीमेटली आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी सावधानी ही एकमात्र आपका मूल मंत्र है जो आपको बचाने वाला है। समझ लीजिए कि हम सब लोग आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के वॉरफील्ड के केंद्र बिंदु पर आ चुके हैं, हमें चारों ओर से अटैक होने वाला है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक अच्छा सुरक्षा कवच पहन लीजिए, और वो सुरक्षा कवच है आपकी सावधानी, आपकी सूझबूझ, क्योंकि ये सुरक्षा कवच आपको विभिन्न प्रकार के अटैक्स को रिपेल करने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और शेयरिंग इज केयरिंग, ये सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए अप्लाई होती है, बिकॉज आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो सगे संबंधी हैं वो इस चक्रव्यूह में ना फंसे। वेल, मुझे पता है आप जाने का समय हो गया है, और जब भी मैं जाता हूं आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन जाएंगे तभी तो फिर से लौट कर आएंगे। एंड आकाशवाणी पॉडकास्ट, आपका होस्ट, आपका दोस्त साइन आउट कर रहा है अलॉन्ग विद डॉक्टर पवन दुग्गल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी।
0: थैंक यू।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: நேயர்கள் இதுவரை தி ஆகாஷ்வாணி பாட்காஸ்ட் இணைய பாதுகாப்பு நிபுணர் டாக்டர் பவன் துகல் அவர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியை கேட்டீர்கள். நாம் இணைந்திருக்கிறோம் திருச்சி FM Rainbow 102.1.